I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammad Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब

मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा, जा।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

और रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

संजय सावंत से आप गीत को सुने की थोड़ा प्यार चाहिए, उजाला रेडियो है ये। हर एक को शुभ दिन, शुभ रात्रि, पेश है हम सब की तरफ से।

फिल्म का नाम मैं तेरा हीरो एंड स्टेशन है द लुक्स्ट एंड गजलस्ट ओ जला रेडियो

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओ तुम्हें तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

और क्यों होता है प्यार, क्यों होता है प्यार, क्यों आता है बहार, ना तुम जानो ना हम। लकी अली और रामिया से आप सुने फिल्म का नाम कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, उजाला रेडियो से। अगला गीत उदित नारायण की आवाज में होंगे।

0: खुशी।
1: तू मेरे दिन में, मेरी रातों में, तेरी याद हम सफर सुबह और शाम। उदित नारायण की आवाज, फिल्म का नाम और प्यार हो गया।

0: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस शौक से आप आज़ादी का जश्न मनाने यहाँ आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आज़ादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसात अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो अल्बा गोंजालस के ननिया सास आईमे और फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गोलबिया बहादुर मंगरूलाल की पत्तो रोटरडम लेयर वार्त एसलमोंदे की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी जो थी। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मल्लिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी अल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी रोटरडम एसलमोंदे लेयरवार्त की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका आज शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रॉ सेंट्रम खुदसई के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदा होम त्वी उर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 103-101 रोटरडम में।

और मृत्यु समाचार सुनिए कपिल आनंदन ऐसल से। परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत। बेटी आशा बहादुर की माँ, दामाद पिम देदर्त की सास, अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी, आल्बा गोंजालेस के ननिया सास, आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी, रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कपिल आनंदन ऐसल से परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत। बेटी आशा बहादुर की माँ, दामाद पिम देदर्त की सास, अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी, आल्बा गोंजालेस के ननिया सास, आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी, रोटरडम एसल मोंदे की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रोसेंट्रम खुदजे के मुर्दालय बोजम सिंगल 35 रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदा होम त्वी यूर किए जाएंगे देला क्रीमाटोरियम मातलिंक वेख 101 रोटरडम में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए खुश ज़ीलांड से। समस्त परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर बया बहादुर सीता बहादुर इंदर बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर सांद्रा वेलखर्स बहादुर स्वर्गीय प्रीतिपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमनी जगेसर बहादुर के भौजी स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी व्रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम निवेरखफोंदनवेख मेस्टर बोईती के निवासी जो थी। खुश ज़ीलांड से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल की पतो लीन बासदेव बहादुर बेया बहादुर सीता बहादुर इंदर बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर सांद्रा वेलखर्स बहादुर स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर के भौजी स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रोसेंट्रम खुदजई के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदाहम त्वे उर किए जाएंगे देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 103-101 रोटरडम में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार बहादुर के दुख में शामिल है। और जानकारी के लिए तार का नंबर दिए गए है 06-51-55-02-71

उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिदम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 इकोनिके स्टेमें इन एन अनवर्गेटलिके शो 19 सितंबर थिएटर द मेरवाड में Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn Kisar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: का झंडा, एक हाथ में श्रीनाम का झंडा, दूजे में तलवार, कोम का होगा तभी उधार।
1: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सूरीनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
0: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
2: Binnenkort jarig, door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisika moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandera vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

ये दिल मिलते हैं मुश्किल से, इश्क करो दिल से, द स्टेम फन जुबिन नौटियाल। उजाला रेडियो है सुनने वालों, आई होप दैट यू लेकर गनीत फ्रॉम द प्रachtige मूवी नंबर्स, जहां भी आप व्हाट यू कैन डू बेंट। उजाला रेडियो है सुनने वालों, गनीत लेकर फ्रॉम द बेस्ट हिट्स।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। रोटरडम से परिवार बहादुर, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो अल्बा गोंजालस के ननिया सास आईमे और फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गोलबिया बहादुर मंगरूलाल की पतो। रोटरडम लेयर वार्त एसलमोंदे की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी जो थी। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मल्लेशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी अल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी। रोटरडम एसलमोंदे लेयरवार्त की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदा होम त्वे उर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंक वेख 101 101 रोटरडम में।

और मृत्यु समाचार सुनिए। कपेल ऑन द एसल से परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत। बेटी आशा बहादुर की मां, दामाद पिम देदर्त की सास, अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी, आल्बा गोंजालेस के ननिया सास, आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी, रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कपेल ऑन द एसल से परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत। बेटी आशा बहादुर की मां, दामाद पिम देदर्त की सास, अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी, आल्बा गोंजालेस के ननिया सास, आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी, रोटरडम एसल मोंदे की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाहक्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदा होम त्वी उर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मातलिंक वेख 101 रोटरडम में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। खुश ज़ीलांद से समस्त परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर बया बहादुर सीता बहादुर इंदर बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर सांद्रा वेलखर्स बहादुर स्वर्गीय प्रीतिपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमनी जगेसर बहादुर के भौजी स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी व्रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम निवेर्ख फोंदनवेख मेस्टर बोईती के निवासी जो थी। खुश ज़ीलांद से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल की पतो लीन बासदेव बहादुर बेया बहादुर सीता बहादुर इंदर बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर सांद्रा वेलखर्स बहादुर स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमनी जगेसर बहादुर के भौजी स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी व्रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदा हम त्वे उर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 103-101 रोटरडम में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कापेला आंदन ऐसल से बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉयको बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिजानंद कुमार बॉयको बहादुर की माँ रोटरडम ऐसल मोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि पहले सूरीनाम निवेरखफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कापेला आंदन ऐसल से बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉयको बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉयको बहादुर की माँ रोटरडम ऐसल मोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु हो गई है और इन्हें लोग मारी बहादुर के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया सोमवार दिन में 2 बजे मांदांद त्वे ऊर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मातलिंक वेख 101 रोटरडम जुइट में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-51-55-02-71 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार बहादुर के दुख में शामिल है।

पांच मिनट बाकी है सरे सात बजने में मेरे प्यारे सुनने वालों, यह है उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज नए महीना सितंबर का पहला शनिवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, जिस वीकेंड तथा सात रखावंत, तो तहे दिल से स्वागत करता हूं आज पांच तारीख सितंबर को, वो भी साल 2026। तमाम शॉपिंग वॉपिंग खाना पकाना सब हो गया, बहुत सारे लोग आज रोटरडम में थे और नासरीफ पौधा पकड़ने के लिए या यूं ही घूमने के लिए, आज हाफनदाख भी था तो काफी लोग दूर दूर से आए थे, कल भी रहेंगे। मैंने भी विलम ब्रुक से कुछ झलकें मारी हैं दिमाग पर और बहुत सुंदर लगा। और अब मेरे प्यारे सुनने वालों, स्टूडियो में बैठा हूं रोटरडम का यूआर के स्टूडियो रोटरडम में, और आपका दिल हम बहलाएंगे रात्रि में 12 बजे तक। वंस अगेन आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज़ें। होप लुक हैप्पी विद लेकर्स खमाक, और कुछ पीने के लिए आपने रखे भी आसपास, शायद आप अकेले हो लेकिन हो सकता है दोस्तों ही प्रेमियों अपने परिवार के साथ सुन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप काम पर सुन रहे हो, अपने मोटर कार में सुन रहे होंगे या ट्रेम, जो हमारे भाई लोग ट्रेम और बस भी चलाते हैं सुनते हैं, और विदेश में शायद हो या विदेश से आए हो हमारे इस देश, जैसे भी हो तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप भरपूर एंजॉय करें द लोकल सॉन्ग्स, नए पुराने, आज कुछ पुराने भी है जबरदस्त वाला सेवा में जो हम पेश करने वाले हैं। और मेरे प्यारे से नौलो, ये प्रोग्राम का दौरान आप सभी को तो मालूम है जो मुझे ऐप करेंगे 0 3 9 9 9 फॉर्मूला वही है, उन सभी के नाम से गीत हम चलाएंगे, एक लोकल हम नाम करेंगे, और जितनी ही जल्दी आप ऐप करेंगे उतनी ही जल्दी आपका गीत भी हम पेश करेंगे। और गाने जो है मेरे प्यारे से नौलो 8 बजे की इश्तिहारों के बाद सेवा में मैं पेश करूंगा। एपर्स के नाम नगमाए, ये मखदूर खीफ विलियन रुस्तख नुमर ऑफ बैठक गाना दसन चलता नगमा, दत मख ये वेल दूर खीफ खीन डिटल्स। मेरे प्यारे से नोलो 0 3 9 9 9 9 जहां पर आपको ऐप करना है, स्टूडियो का व्हाट्सएप है, और रहे आपके कामों काज, फरमाइश जरूरी खबरें, मौत की खबरें, आपकी हर एक जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन के वास्ते आप सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे दफ्तर को तार कर सकते हो अब 0 3 4 9 9 0 8 0 7 0 3 4 9 9 0 8 0 7, या तो 24 घंटे 7 दिन लगातार आप मेल के जरिए अपना कामकाज दिवा सकते हैं, और वो भी आपको मेल करना है info@ujala.nl। और हमारे सोशल्स पर भी आप एक झलक जाइए, मुझे ढूंढ या मुझे नहीं उजाला रेडियो को ढूंढिए और गेट कनेक्टेड टू उजाला रेडियो, इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक और यूट्यूब पर उजाला रेडियो शामिल है, हमारा दोस्त बन जाइए, गेट कनेक्टेड टू उजाला रेडियो जोड़ जाइए, तरह तरह की सूचनाएं जो हम छापते हैं आसानी से आप पढ़ पाओगे। और भी बहुत सारे बातें आपसे कहना है मेरे प्यारे सुनने वालों लेकिन फिलहाल चलो पहला गीत की ओर, और बातें तो हम करेंगे आज रात भर क्योंकि 12 बजे तक जैसे मैंने कहा आपका साथ हम देंगे। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय योर वीकेंड, हनीट फन एंड हनीट फन सैटरडे नाइट फीवर, एक पुराना कुमार सानू टुगेदर विद इंडियन टेम्पटेशंस, हियर ऑन यू आर

मेंस दैट इज कुमार सानू, आई है बहार, कर ले तू मुझसे प्यार, और ऐसी मौसम में कर ले तू हमसे प्यार। एक दूजे से प्यार जरूर करना चाहिए मेरे प्यारे सुनने वालों, लड़ाई झगड़े से क्या मिलेगा, देखो ना पूरे वर्ष में कहां कहां आप देखेंगे लिंग्स रेक्स ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हैप मकार लीफ, अगर आप प्यार बरसाएंगे तो प्यार के बरसात में लोग एकदम झूम जाएंगे, खुश रहेंगे, और मिलजुल कर कितना खूबसूरत ये दुनिया हो जाएंगे, है ना। फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से नौलो, उजाला रेडियो पर आप चून है सैटरडे नाइट फीवर, अच्छे 7 मिनट खवीज ओवर हलवा, और एक गीत के अंदर अंदर में 5-6 लोगों ने ऐप किए हैं, तो आप समझ सकते कि 2 लोग और ऐप करेंगे, दन इस ब्लॉकिये फन 8 tot 9 alfo, इतना स्नेल जा है। 020-363-0008 मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको ऐप करना है, हाय हेलो कहना है, और ये कश आप उठाएंगे तो 8 बजे की इश्तिहारों के बाद मेरा ही चॉइस का एक लोकल आप तक हम पेश करेंगे। सागर मालिक और जिया रामबरन, अब की बार। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों।

सागर मालिक और जी हाँ राम बरन मेरे प्यारे जिन वालों, एंडे तेज फारिस बरसाती डफरमासी द स्टार्स।

या फारिस बरसाती मेरे प्यारे से नालो खूबसूरत गीत टुगेदर विद फॉर्मेशन द स्टार्स, हमारे प्रिय सूरीनाम देश का द स्टार्स। मेरे प्यारे से नालो वक्त तो आगे निकल रहे हैं इतनी रफ्तार के साथ। Het is al kwart voor acht al geweest. और the locals जो हमने चुन करके रखा है आज कुछ एकदम नए हैं, और उन नए नगमाओं में से हम जरूर से जरूर चलाएंगे गाने। आज तो पांच है, 5 सितंबर, तो आप सोच सकते हैं कौन कौन नगमाएं आज रिलीज हुए हैं, कुछ कल और कुछ परसों। Het zijn er niet veel in de 5 dagen die zijn geweest van september, maar toch. Hamne lekker aaien, hè, or zeroer ze zeroer, zijn we met peeskringen. En ik heb nog een heleboel van augustus, jo apko sunana, hè, dat is wel een hele waslijst. Aatje kutje, wolle ze begin ik al kraaptek peeskringen. Van juli heb ik ook nog heel wat. En van juni, mei, अरे बाप रे, हम देखे लाइक दम यानिवारी तक के गाना अबे हम तो लोगों के ना सुनाई ली। तो 020-363-0808 स्टूडियो का व्हाट्सएप है मेरे प्यारे सुनो लो, और ये कश उठाएंगे हाय हेलो कहने के लिए व्हाट्सएप के जरिए। तो आपके नाम से जरूर मेरी ही पसंद का एक लोकल सेवा में पेश करेंगे आपके लिए। थोड़ा सा त्रिनी पॉप भी हो जाए यार, दी दोनों टॉक स्टेट्स बेहतर एंड खुद एंड देखो क्या तैयार करके रखा है ये नगमा।

या काई दी मेरे प्यारे सिने वालों, खूबसूरत त्रिनी पॉप, एक और त्रिनी पॉप के साथ ये घंटे को हम समापित करेंगे। उसके बाद में इश्तिहारे आप सुनेंगे 8 बजे का मेरे प्यारे सुनने वालों, और तमाम सूचनाओं के बाद सेवा में फिर नतुर्लक हम हाजिर रहेंगे। ये कांडोर लोपंत एप ना 020-363-0008, maar weet dat het druk is en heb alstublieft geduld.

अच्छा ही मेरे प्यारे सुनने वालों और साथ दे रहे थे द आउटर बैंड नेचुरल, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

यस यस यस लेट्स डू इट मेरे प्यारे सिने वालों। एनवर खान सीकर धुन हम जरूर से जरूर करेंगे और कर रहे हैं आपका सेवा, और आप भरपूर भी साथ दे रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे एपर्स आज की रात्रि का ये प्रोग्राम में बहुत एक नॉर्मल हो खवेन बहन, और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग अभी बाद में एप करेंगे भी। आप सभी से बस यही हम कहेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, हैप आउट टू बिलीव खदुल्त। हो सकता है कि आपका गीत कुछ देरी से आए, जिस फॉलो होल्डर से एप्स आए हैं अंडर उसी फॉलो होल्डर से लोगों के लिए गीत हम चलाएंगे। इट इज 12 मिनट ओवर द क्लॉक फन अख मेरे प्यारे सुनने वालों, 8:12 गुजर चुके हैं। आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन मनचाहा उजाला रेडियो है ये। मैं हूँ आपका यार का यार रतन राम दुलारे पांडे, और सैटरडे नाइट फीवर जब भी शनिवार को मौका मिलता है आपका सेवा करने चले आए। एंड दन डू इट नेचुरली मैट द वीकेंड लीचेस एंड दैट इज नेचुरली द हेयर लाइक लोकल्स। 020-363-0808 स्टूडियो का व्हाट्सएप है, और जो लोग भी ऐप करेंगे उन्हें मालूम है रतन गिफ्ट ऑलटाइम आंसर, और आज भी सभी को जवाब मिलेगा व्हाट्सएप पर। आप मत भूलिए अपना नाम लिखने का और आप कहां से ऐप कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना मैं पसंद करता हूं कि मैं किससे बातें करता हूं और आप कहां से हमारे ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो मेरे प्यारे सुनो लो, आपको तो मालूम है कि कल खूबसूरत प्रोग्राम भी होने वाला है,

Ik moest even weer gaan spieken. Ik ben hem dronken zomaar. Onnodig vals informatie hem dit te tappen. Kul, nieuw programma. Waar is het nieuw naar hier? Ik nieuw roep me. Programma sajaya jayega. Op een andere tijd. Robbie Makkaji. Or Lloyd Mahabir Milker. Program banayenge. The Stand van Suriname. Kyunki hamara dil wo jo hai na. Hamara dil jo hai. Bilkul Surinami hai. Tenminste, de meeste luisteraars van jou aan. Mujhe malum hai. Log bhi Trinidad and Tobago se sun rahe hai. Guyana ka bhi kuch log hai jo sun rahe hai mere program. En natuurlijk, niet te vergeten Mauritius ka jo hai mere कुछ वहां साथियों और हमारे भारत देश का भी लोग जो सुन रहे हैं प्रोग्राम एंड व्हाट यू नीड टू फॉरगेट कि न्यूयॉर्क सिटी द बिग एप्पल में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स है उजाला रेडियो का फ्रेंड्स है गयाना द वेस्ट इंडीज से सुरीनाम से जो भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं एंड दैट गेल्ड नेचुरली आल्सो फॉर कनाडा और आजकल इंग्लैंड में भी जो हमारे भारत देश के वासी हैं वहां पर रहते हैं कभी कभी वो भी व्हाट्सएप करते हैं या मैसेंजर के जरिए बताते हैं कि भाई बहुत मजा आया आपके प्रोग्राम सुनते वक्त तो आप सोच सकते हैं कि कितनी रेडियो स्टेशन है रेडियो स्टेशन और इस तरह का मैसेज आए कि लोग हमारे ही प्रोग्राम सुन रहे हैं ऑल द आंध्र सीकर अगर आप कहेंगे कि आपने एंजॉय की है तो बिहान मेरे प्यारे सुनो लो कल एन एल्के सोंडा एक बजे दोपहर का एक बजे से दिल है सरनामी द स्टंट फन साक द स्टंट फन सुरीनाम Met Robbie Makka, presentatie, collega Lloyd Mahabir. En laten we morgen lekker genieten en de jongens supporten. En op de hoogte blijven van de allernieuwste weetjes van Suriname. Mere pyare se lo, main jata hoon, WhatsApp ke list par dikhta hoon. Kaun hai jo app ki hai? हमारा चून चला नहीं कि आईफी जहांगीर uit Amsterdam आपने ऐप किए ये ऐप खलाइक मन तत्व साल रोइम ओवर सेव लेकिन मृत्यु समाचार रहा इसलिए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर पाए जो से मुझसे तार ना दूं मा आईफी वास इरसे एंड आईफी थैंक यू वेल एंजॉय योर वीकेंड एंड थैंक यू वेल फॉर योर ऑलवेज सपोर्ट The King of Hindi Pop उमर वागी तुसैन का गाया हुआ एक गीत लता जी का है आईफी के नाम करता हूं एट अमस्टरडम

जरा ठहर जाओ, तरप की दिल ये पुकारे। लता जी का ये नगमा द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन की आवाज। मेरे प्यारे सुन वालों, हीरा निवास नौ 3603 जहां पर आपको ऐप करना है अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से गीत मैं चलाऊं। हमारी लिस्ट पर दूसरा नाम है अमसनम सेंट्रम का प्रभाजी, और प्रभाजी पका चुके हैं, खा चुके हैं, अब रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उजाला रेडियो सैटरडे नाइट फीवर। और आज प्रभाजी हमने भी कुछ कम खास नहीं खाया है, रोटी आलू और मसाला का केप, तीता तीता मर्चा पीसलवा, और का नाम है कुसबंटी। और रोटी दाल के रोटी था। और अभी जो हम चबा रहे हैं दत्सेन का बोले छोटा छोटा जुन किप रहे हैं ओके मैसेना में लपेट करके पाका करल गल है। और ओके हम चबायला तरीके से मैं तो लेकर चटनी चतनिया जो है ई का नाम है आम और ग्रीतल आम और ग्रीती करल वाल पपाया है। बहुत तीता ना है लेकिन ठीक है। तो प्रभा जी थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। आप अपना शनिवार को खूब एंजॉय करें। और मैं देखता हूँ गाने वाले आपके लिए शेखर कुमार, ये नगमा फॉर प्रभावित अमसलम सिंड्रोम।

वादा रहा प्यार से प्यार का और अब हम ना होंगे जुदा। अरे भाई जुदा क्यों होंगे, एक तो ही दिन हमें तो जाना है, उस पल तक हम जुदा नहीं होंगे, ये वादा रहा। शिखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ, दान इस ताल एक मिनट ओवर द क्लॉक फन हाल्फ नहीं है, सरे 8:01 गुजर चुके हैं। और एपर्स के नाम करता हूँ गीत और स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह कार में बैठकर प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मोटर कार में, तो एंजॉय स्वाग प्लाइ रचिवे तुरख बैन फन आसिया होप डट ये खनोत है। En nu, lekker genieten. Ik groep zo dat giet. Eind augustus ka jo release hua. Pichele hefte hem nee, je giet kochelai en logo ne pasen ki. En je weet, ik kan niet herhalen op een avond. Dan draai ik het maar één keer. Maar, het nal ook enjoy kiet het to mij zo chita hoe je giet. Swagrike naam, chelo, chela tete. Enjoy. Voor Swagri Hans Lekman Zinger uit Soetermeer.

Ja, beautiful, mijn repere zin al op. Prachtig gezongen. En prachtig begeleid. Je hebt haar weer eens. Meri bhigi bhigi si, balkon pe reh gaye. मेरे प्यारे सुनने वालों, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। और रोटरडैम शहर में जॉनी कालीचरण भैया भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, हमेशा सुनते हैं प्रोग्राम को और ऐप करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद जॉनी कालीचरण जी। भैया एक गीत हमने तैयार करके रखा है, एकदम फेयर्स फॉर द पेयर्स, डिफरमासी सूर्य और सुजल उमराव जी का गाया हुआ एक बकेंड ढोबिनिया वाला फोर भैया जॉनी कालीचरण अहित रोटरडैम।

Suđel umrao, meri peri se nolo, meri formaciji Surya. Saturday Night Fever है ये मेरे प्यारे सिनेमालो द लोकल सेवा में पेश हो रहे हैं हियर ऑन यू आर आपी का मनचाहा और ये प्रोग्राम जिस तरह से है उसी तरह से हम सजा रहे हैं सभी एपर्स के नाम जो लोग कश उठाए हैं एप करने के लिए स्टूडियो में अपनोल तुम तकदरी से अजदरी नौलाख नौलाख उन सभी के नाम से गीत चला रहा हूं बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सबर करना पड़ेगा आप सभी को क्योंकि लिस्ट काफी लंबा है और नगमाएं भी चार पांच मिनट के होते हैं कोनो कोनो तो और लंबा तो अभी चखडोल सभी के लिए चलाएंगे ये वादा रहा अब की बार मैं चल रहा हूं आम्स्टलफीन की ओर जहां पर समधिनिया सुशीला चंद्रिका सिंह जी है और बितिया रानी मालती तो मालती जी और सुशीला जी के नाम अगले गीत हम करेंगे और कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद चून करने के लिए और आपके ऐप के लिए आप दोनों एंजॉय करिए अपना वीकेंड एंड एक गीत हमने तैयार करके रखा है द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन और ये गीत आप दोनों के नाम करता

द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तुसैन, मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं। अभी इस घंटे का आखिरी गीत हम पेश करने जाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, ओमदात हम बर चुके हैं ऑलमोस्ट 9 o'clock, यानी कि 9 बजे अभी इश्तिहारे होंगे और हम 9 बजे तक आन पहुंचे हैं। अम्सरडम का मानो ने भी प्रोग्राम पे चून किए हुए हैं, उजाला रेडियो पर चून किए हुए हैं और मानो भैया भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं। दंकीवल मानो आपके ऐप के लिए एंजॉय, यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और एंजॉय ये नगमा फन मिस्टर ब्लैक जो पिछले महीना रिलीज हुआ है, काफी पॉपुलर चटनी मिक्स है। ये गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों हम बढ़ चलेंगे 9 बजे के इश्तिहारों की ओर और इश्तिहारों के बाद हम वापस आएंगे लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। ये कांडोल ओपन लाइव ऐप अभी मौका है लोगों के लिए गीत चलाने का, 0303 3 0 0 0 This is for Manu at Amsterdam.

सूरज हुआ मठम और चांद चलने लगा, मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, 9:09 गुजर चुके हैं। ये है आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और एकदम लाइव एंड डायरेक्ट QR के स्टूडियो रतनराम से फिर एक बार हम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर द ब्यूटीफुल लोकल्स सेवा में पेश किया जा रहा है। और एक घंटे लगातार एपर्स के नाम हमने गीत चलाए हैं और लिस्ट काफी नाम है, तो आने वाले 2 घंटे जरूर से जरूर भी लोगों के लिए गीत हम चलाएंगे। तो मेरे प्यारे से नोलो 0 3 3 9 0 0, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं, ये मग दौर खीफ ऑफ यूर नंबर विल ऑफन चलता। लेकिन आपको मालूम रहे कि 11 से 12 बजे दांदू नतालते दुरुस्त खान मेथाली मसूल। मिके जी आय दनहाग, दंकिवेल मिके आपके ऐप के लिए। मिके जब भी आपको मौका मिलता है आप सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद, दंकिवेल शुक्रिया। एक गीत हमने तैयार करके रखा है मिके, आय दनहाग आपके नाम करता हूँ।

रहा है शरोन बिंद्राबन की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये खूबसूरत गीत आप तक हमने पेश किया है। हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के वास्ते मेरे प्यारे सुनने वालों, चेक www.ujala.nl ऑफ ऑन सोशल्स। तू जाने दो, हम हार्लेम की ओर बढ़ चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। वहां आइलिन जी भी प्रोग्राम से जोर आनंद ले रहे हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं। तो आइलिन जी को कहेंगे अनहील मोए साथ रख, एंजॉय योर वीकेंड आइलिन जी। और बेहद खुशी है हम कि आप ने फिर चून किए हुए हैं, और आपकी ऐप के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। गीत तैयार करके रखा है और डॉक्टर मासी सोनट्रॉनिक आइवन जी गीत गाएंगे आइलिन के नाम अठालम।

लग जा गले कि फिर ये रात कभी हो ना हो, द साउंडट्रॉनिक्स मेरे प्यारे सुनने वालों, आइवन की आवाज में गीत हमने आप तक पेश किया है। एनवर खान वेयर नाम सदम मेरे प्यारे सुनने वालों, कैटरीना वहां प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो कैटरीना डंक यू वेल आपके ऐप के लिए। फैन द चाफ खस्तेम बेन कैटरीना फनोइट ऑन से मोय होस्टेड। शेखर कुमार का गाया हुआ गीत कैटरीना के नाम है एम्स्टरडम।

चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। शिखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। पता नहीं आप जहां पर हैं, खसलख है मेरे प्यारे सुनने वालों, यहां स्टूडियो में बहुत खसलख है और उम्मीद और आशा करते हैं कि यहां का जो खसलख है थे आप तक कम आपके रेडियो के जरिए, उजाला रेडियो के जरिए वहां पर भी हम अपना यहाँ का खुशहाली रेडियो के जरिए भी बात रहे हैं। Volgens mij is het buiten, ja buiten dat het donker is, maar volgens mij regent het ook een beetje, dhimi dhimi. Aur temperatuur bhi kuch saka bhel hai, naar 18-17 graden. Maar het is ook wel lekker toch? मेरे प्यारे सुनो लो, मैं यहाँ चिकन कैसे बोल रहे हैं, किप न्यूगट्स घर का बनावल नटमाई से ही ना टुटनी पेतख है, टुटना पेतख ना टुटनी से चटनी हम ले ली और चटनी जो है ग्रीत करल वाल है, माय फेवरेट ग्रीत करल आम और पपैया तो मैंने मिलाए और बहुत मजा आ रहे हैं। और कभी कभी मन ये मैं चाहता हूँ कि मैं असिक दिन सो है क्या बोले गो रोती तन सो रिन रोल ऑल्सो सोर्ट रैप माया रैप कहाँ मिली मारे दिस हेल कुर And it is so simple. इतना simple है ही कि पढ़ाई या कि फिलाई ब्लॉकेज में काट के मारिनेट करके एक अंडा फोड़ के और अब खेत में दन हालियम दूर देख फन मैसेज और उसके बाका कर सके ना ना अपना बाका कहीं मुकिन सोच दूँ Walk pan me. Maar ja, dan ga je het met rijst of zo of wat dan ook eten. Maar dit was meer bedoeld als snack. Kafi mazare, hè. Kafi mazare. Ria Kaluji. Ria Kaluji bhi program se aanand le rahe hain. Tune kiye hue Ujala Radio par. To Ria ji, aaj fir ek baar aapko mauka mila tune karne ke liye. Om af te stemmen op you are. Dankjewel, Aapke, heb ik jullie. En blijf vooral genieten van het leven. Karin bij Tali, Mary Pierre Sinola, together with Sabroso. Yenagma, Riakalukenam.

Karin Bejtelý, milí pěry Sinovalu. Jmenu formací Sabroso. Tu hevhý dilný dísi apnakha. Gari ki taraf mein dekho to mere pyare se nolo 6 minute tak guzar chuke hain sare 9 bajkar 36 minute over the clock fun half 3 Ujala Radio Saturday Night Fever the weekend vibes the moy locals here on you are En ik weet niet of ze al ondertussen gearriveerd zijn Lekin Duitsland se rawana ho rahe the Bainat और देविका मैं दो ऑटो नार सुतमीर तो थैंक यू लिवेल बैनाथ जी और देविका जी ट्यून करने के लिए इन द ऑटो लेकर आप स्टेम होप यू आर ये नगमा आप दोनों के नाम करता हूं बैनाथ जी और देविका जी अच्छु तमीर

चांदनी रात है तू मेरे साथ है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड के अंडर में सागर मालिक जी की आवाज। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सिनवालो हम बढ़ चलेंगे बरेरा की ओर, जहां पर मफराव एंड मनेर बिहारी अपनी हिती प्रेमियों के साथ मिलकर प्रोग्राम सुन रहे हैं। टू द फैमिली बिहारी जी को हम कहेंगे थैंक यू, वेल धन्यवाद आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, ये शनिवार आप भरपूर एंजॉय करें, अपना वीकेंड आप एंजॉय करें। एक गीत हमने तैयार करके रखा है और फैमिली बिहारी जी के लिए अद्भुत बरेरा।

जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना ही पड़ेगा। अमोय रेत्रो फैशन मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त तो काफी रफ्तार से आगे निकल रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 10 बजे की ओर। और अभी 10 बजे इश्तिहारे फिर एक बार आप सुनेंगे और तमाम सूचनाओं के बाद हम फिर सेवा में हाजिर रहेंगे लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। मर्स ब्रुक में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं चित्रा जी और हिरेंद्रू। तो चित्रा जी और हिरेंद्रू जी बहुत बहुत धन्यवाद चून करने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड। और एक नगमा डफरमासी फ्री स्टाइल और सूरीनाम का हमने तैयार करके रखा है नगमा, जो अमरीश गाएंगे और पुराना चटनी मिक्स है। ऑल हू वेल, ये गीत यूनी में रिलीज हुआ है इस साल में, एक पुराना नगमा फिर से न्यू आयाश में। तो चित्रा जी और इंद्रजी के नाम अटमार्स ब्रुक।

या फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी, डिफरमासी फ्री स्टाइल और अमरीश की आवाज में गीत आप सभी ने सुने हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। एक आखिरी गीत और इस आखिरी गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों 10 बजे के ब्रेक की ओर बढ़ चलेंगे और मैं गीत तैयार करके रखा है आरएनएम में जो रहती है शारदा शारदा डंकीवेल आपके अपकली फेंडा चाफ खस्तेम बेंटो प्यूआर और एंजॉय योर वीकेंड एंजॉय दिस सॉन्ग एंड नुखमास बदंग शारदा ऐत आरएनएम ये नगमा आपके नाम। मेरे प्यारे सुनो इस गीत के बाद ब्रेक होंगे और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

मेरे प्यारे सुनने वालों, वेलकम बैक। 10 मिनट गुजर चुके हैं 10 बजकर। मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो पर आप चून किए हुए हैं और प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं सैटरडे नाइट फीवर लाइव एंड डायरेक्ट क्यू आर के स्टूडियो रतनराम से जो पेश हो रहे हैं। मैं हूं रतनराम लाड़े पांडे और फिर एक बार आप सभी को स्वागत करता हूं एटिस वीकेंड लेकर खनीत। मेरे प्यारे सुनने वालों, और लेकर खनीत में होता है दोस्तों हिति प्रेमियों के साथ लेकर ईट लेकर ड्रिंक लेकर खनीत। तो एपर्स के नाम गीत करता हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, 0 3 3 9 9 9 जितने लोग भी ऐप किए हैं उन सभी के नाम से गीत चला रहा हूं। खून लेकर फेर्डर ओसडोरप से भी ऐप आए हैं, ओसडोरप से सबिता जी का ऐप आए हैं ओसडोरप से, ओसडोरप अम्स्टरडम। तो डंकीवेल बेहद खुशी है हम सबिता जी की आपने भी चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। कविता सुखू का गाया हुआ एक नगमा मैं सबिता के नाम करता हूं ओसडोरप।

कविता सुखू मेरे प्यारे सिने वालों, प्रख्तक मोय गजोन देख लेना मेरे प्यारे सिने वालों। मैं अगले गीत की ओर आपको ले चलेंगे। एनते सवा दस मेरे प्यारे सिने वालों साल को आटा ओवर तीन हूं, और अगले गीत जो है फमिली भगवान दास अर्थ अलगमार बोले टाउन अपने अर्थबाउ शहर में बैठकर लेकर खनीत फनत वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं अपना शनिवार खाना पीना के साथ एंड नतुलक उजाला रेडियो। तो फमिली भगवान दास को हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप कैब के लिए चून करने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड भरपूर, और आप सभी के नाम फमिली भगवान दास ये नगमा मैं नाम करता हूं दारिन अलकमार।

या शेखर कुमार मेरे प्यारे सुनो वालों, तरह तरह के नगमाएं ये लोग फिर से सजा रहे हैं और नीली नीली आंखें ओ मेरी जान आप तक हमने पेश किया है। श्रीराम रतनम में जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं अभी वो है रोहिणी कल्लू जी, और रोहिणी कल्लू जी को हम कहेंगे धन्यवाद। एंजॉय योर वीकेंड और एंजॉय यू आर अनिल भीम और कविता वंस अगेन, कविता सुखू जी अब की बार अनिल भीम के साथ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। मैं ये गीत मुझे काफी पसंद है, पता नहीं क्यों, शायद आपको पता चल जाएगा क्यों। लेकर बीत एक वेद नीत मोई खुद खसोंग एक वेद नीत एक वेद तेहनीत, लेकिन रोहिणी कल्लू जी मैंने इस गीत को देखा काफी बार चला चुके हैं, आज फिर एक बार, लेकिन आपके नाम से मैं चलाऊंगा ये नगमा, अनिल भीम का गाया हुआ और कविता सुक्कू फोर रोहिणी कल्लू और श्रीराम रतनम।

अनिल भीम मेरे प्यारे सिनेमालो एंड टुगेदर विद कविता सुखू और कविता जी का एक और गीत हम अभी चलाएंगे कुछ देर में। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनेमालो, 4 मिनट बाकी हैं और वो भी 10:30 बजने में, 4 मिनट 4 o'clock फन हाल ऑफ एल्फ सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं हियर ऑन यू आर आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन मेरे प्यारे सिनेमालो।

मेरे प्यारे सुनने वालों, मैंने आपसे भी से कहा है, लेकिन फिर एक बार कहता हूं कि कल 1 बजे दोपहर को हियर ऑन यू आर प्रोग्राम एकदम नए रूप में उस पॉलिटिक्स या ऑफ 12 पॉलिटिक सूरीनाम कैनर एंड उस सूरीनाम से पॉलिटिका एनालिस्ट रॉबी मक्का जी प्रोग्राम में आएंगे 1 बजे प्रेजेंटेशन जो होंगे लॉयड महावीर जी के हाथों में एकदम नए रूप में। प्रोग्राम का नाम है दिल है सूरीनाम, दिल है सरनामी, दस्तान फन सूरीनाम, तरह तरह की बातें जो एक्चुअल है सूरीनाम का। कल मोर्ख फन ऑफ इन यूर हीर ऑन यू आर दिल है सरनामी एंड दैट इज द होम सो। दुनिया के किस कोने में भी हम रहेंगे, अपना दिल तो सूरीनामी है। मोर्ख रॉबी मक्का एंड लॉयड महावीर एक बार मन्यूट अभी तो चून कर ले लेना कल दोपहर 1 बजे को हियर ऑन यू आर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम में द इंटरव्यू में रॉबी मक्का। ब्रीडा में गायत्री प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। गायत्री नंकीवेल धारे ब्रीडा, आपने चून किए हुए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। और हमने गीत को तैयार करके रखा है सत्यम और नीलम की आवाजें, ये दोनों मिलकर गीत गाएंगे। और गायत्री के नाम करता हूँ अब ब्रीडा।

वफादार हाँ सनम, होंगे जुराना हम, चाहे तो चाहे ये जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। नीलम और सत्यम माटाडीन जी फंड फरमात से फ्री स्टाइल अपने आवाजों में गीत गाकर सुनाए हैं आप तक। हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। अगले गीत मेरे प्यारे सुनोलो आल्फ नंद रेन में जो रहती है कमला, कमला भी चून किए हुए है। यू आर उजाला रेडियो पर और एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड शनिवार, और खास करके उजाला रेडियो सैटरडे नाइट फीवर। तो एक गीत हमने तैयार करके रखा है कमला जी के लिए, वंस अगेन कविता सुखो एंड एन टू बैंड, लेकर मोय बचाता पेश करता हूँ। हीरा निवार डंकी लाल कमला फोर ए पी, एंजॉय योर वीकेंड।

तेरा नशा कविता सुखो विद एन टू बैंड हियर ऑन यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकल्स आप तक हम पेश किया करते हैं और स्वाख में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं गढ़वालदो जी मरखड़ी जी और प्यारी बेटी शरीदा तो हेरवाल्डो मरखड़ी जी और शरीदा थैंक यू वेल फॉर द टफ स्टेम हियर ऑफ यू आर खनित फन यू वीकेंड खनित फन एलकार एंड खनित फन यू आर मुका सिंह ऑफ ट्वेल मुकेश नंद कुमार सिंह की आवाज में ये नगमा हेरवाल्डो मरखड़ी जी और शरीदा के नाम दारिन स्वाहा

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको बहुत ही दूर चले ले जाएंगे, और वो भी अक्रॉस द ओशियन, अटलांटिक ओशियन, वो बड़का देश जिसका नाम है USA, अमेरिका, द स्टेट टेक्सास में, वहां पर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और हमेशा जब भी मैं शनिवार को प्रोग्राम बनाता हूं, तो अजय और सुनीता अपनी हिती प्रेमियों पलवार के साथ मिलकर चून किए करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं UR। उसके लिए दिल से धन्यवाद अजय और सुनीता जी, दार इन टेक्सास इन अमेरिका, वारत वारमिस एंड वे है बना द वारम तहीर नीदलंत एंड लकवत फॉर कूलिंग, बारिश भी हो रहे हैं। स्टेरक्तदार मैं तत्वीर मारोन सेतन ब्लाई बने की आप सभी ने चून किए हुए हैं हियर ऑफ UR। ये नगमा आप सभी के नाम करता हूँ।

Ja, ja, ja, dat was natuurlijk prachtig. The Tiger Kumar Sanu together with Indian Temptations. Jenny भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं. Jenny, thank you well for your appear. Farsialize Muhammad Khan और सागर मलिक जी की आवाजें. Jenny के नाम मैं ये गीत करता हूँ. Thank you well, Jenny. Enjoy your weekend. Enjoy your art. Enjoy this song.

दिलजिंद शहीद वागित हुसैन की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, हियर ऑन यू आर जस्ट 3 मिनट ओवर 11 मेरे प्यारे सुनने वालों, 11:10 गुजर चुके हैं। सैटरडे नाइट फीवर का आखिरी घंटा और इस आखिरी घंटे में ओनली सोल्स मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से आगे का 4 घंटा हमने पेश किया है, नगमाए जो पेश हुआ है, आप सभी ने पसंद भी किए होंगे। और आखिरी में ये लोकल का ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर में ओनली सोल्स और एक गीत चलाने जा रहा हूँ। इवनिंग में जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं लक्ष्मण जी थैंक यू वेला, आपके लिए एंजॉय। और लक्ष्मी जी, आपके हमारे और सभी के दिलों में बसे हैं ये नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी एंजॉय कीजिएगा प्रशांत राम जतन की आवाज और खास करके लक्ष्मण जी के नाम करता हूँ। अच्छी इवनिंग है।

प्रशांत राम जतन मेरे प्यारे सुनने वालों, सुहानी चांदनी हमें सोने नहीं देती। दिस इज विपिन सक्तेवा, तेरे दर पर आया सनम।

तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो देखो हम चले आए। विपिन सखदेवा की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, गीत अभी आप सभी ने सुना है, वखान सो में तीन निजाम, निजाम की आवाज में गीत आप सुनेंगे। और मैं आप सभी को ये भी बतला दूं कि मेरे प्यारे सुनने वालों, आज शनिवार है, मोर्ख है वो प्रोग्राम फान लॉयड एंड रॉबी मक्का, एकदम नया दिल है सुरिनामी, दस्तान फान सुरिनाम। दोपहर को 1 बजे इन मेडाख इन यूर लाइफ हियर ऑफ यू आर। एवर्ड बतरेफ मैं मेरे प्यारे सुनोलों, मेरी बात जो है तो अगले हफ्ते वुंसदाग दोनराख एंड सातराख तीनों दिन आप सभी का सेवा करने चले आएंगे। 9 तारीख सितंबर को पेश करेंगे बैक टू द फ्यूचर रात्रि में 6 से 9 बजे, और गुरुवार को 10 तारीख सितंबर को पेश करेंगे 8 से 11 बजे प्रोग्राम दिल की आवाज, और ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर 12 तारीख सितंबर को फिर हम पेश करने वाले हैं, आपको ये मालूम रहे। निजाम वागी हुसैन, दिल तुझको दिया क्या बात है।

निजाम वागित हुसैन मेरे प्यारे सिनवालो एन वखान यूनार द फरमासी रेसलेस आइट हम सनम लाइफ अशोक दुर्गा को आप सुनेंगे तू इश्क मेरा है ये

सलीम वागित हुसैन, मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत बाखुदा तुम ही हो इन्होंने गाकर सुनाए हैं। एनिकेप न्यू इंच क्लार्स्टन, मेरे प्यारे सुनने वालों, दिस इज अर्नोल्ड मलाहे, मेरा दिल चाहे, दिस एपिक नो नोइट खोर मौखा न्यू सामा एंड नाउ लिस्टन हियर ऑन योर

खुदा तुम ही हो, इन्होंने गाकर सुनाए हैं। एनी कैप न्यू इंच क्लार्स्टन, मेरे प्यारे सुनोला, दैट इज अर्नोल्ड मलाहे, मेरा दिल चाहे। दिस एपिक नो नोट होर्ड, मैं वहां नू सामा एनालाइज़र, हियर ऑन यू आर।

अर्नोल्ड मला है मेरे प्यारे सुनने वालों, मेरा दिल चाहे तुम्हें जितना जानोख नीति अडर खोड़ लेकिन आज सुना मोये सॉन्ग। और मेरे प्यारे सुनने वालों, एक दो नगमाए और उसके बाद यहाँ स्टूडियो से हम रुखसत होंगे। मैं देखता हूँ कि आज का ये वक्त भी कितनी रफ्तार से आगे निकल गया, ये 5 घंटे का प्रोग्राम भी

0: Yeah, beautiful, mere pyare se nawalo.
1: Ah, yeah.
0: Benny's House Band, Ishq Sufiana. मेरे प्यारे सुनो, अब वक्त आ गया कि मैं आखिरी गीत सेवा में पेश करूं। बस यही उम्मीद और आशा करता हूं कि आज जिस तरह से ये 5 घंटे का ये प्रोग्राम हमने UR पर सजाए हैं, बनाए हैं, आप सभी लोगों ने जो साथ दिए हैं, आप सभी ने भरपूर भी एंजॉय किए हैं। अगले हफ्ते शनिवार 12 तारीख को ये प्रोग्राम फिर एक बार हम सजाएंगे, बनाएंगे एकदम लाइव एंड डायरेक्ट UR के स्टूडियो रोटरडम से। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल, शुक्रिया। आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ, कल्याण केदार गीत गाएंगे, लेकिन गीत चलाने से पहले आप सभी से यही कहूंगा कि रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल, बाय।

सुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, सुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती, दुनिया फोर ट्वेंटी।

के है रेत निराले सुन तब लेते करे कवाली अकल का अंधा गाट का थोड़ा दिल में मुहब्बत दफाते दफाले जहाँ भी देखे कोई हसीना वही बजा दे बंटी।

मस्तानी, सब है पैसे की दीवानी, इनको चाहिए मोटा बकरा, मोटर साड़ी, सुरमे दानी। जहाँ भी तकड़ा इंजन देखा करती शंटम शंटी, दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

कौन हो भाई हाँ? बीबी बच्चे बहन और भाई सब है मतलब के जायदाई, जेब गरम तो यार हजार, कड़की हो तो कौन हो भाई। एक दिन इनको माल न दो फिर देखो फंटम होगी दुनिया 420, दुनिया पक्की 420, दुनिया पक्की 420। मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल, दुनिया 420।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।